0: नेपालीहरुको मान पर्व विजया दशमी, शुभ दीपावली, नेपाल संवत र छठ पर्व को पावन अवसर में हामी हाम्रा संपूर्ण इष्ट मित्र आफन्तजन शुभ चिंतक सामाजिक क्षेत्र में क्रियाशील व्यक्तित्वहरू र देश विदेश में रहनुहुने संपूर्ण नेपाली दाजुभाई दीदी बहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य र उत्तर उत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: भवसागर बराल सामाजिक व्यक्तित्व ऊर्जा व्यवसायी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 13 आरबा कसेरी।
0: नेपालीहरुको मान पर्व विजया दशमी, शुभ दीपावली, नेपाल संवत र छठ पर्व को पावन अवसर में हामी हाम्रा संपूर्ण इष्ट मित्र आफन्तजन शुभ चिंतक सामाजिक क्षेत्र में क्रियाशील व्यक्तित्वहरू र देश विदेश में रहनुहुने संपूर्ण नेपाली दाजुभाई दीदी बहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य र उत्तर उत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सामाजिक एवं आध्यात्मिक व्यक्तित्व उषा माता नेपाली पोखरा 9 न्यू रोड।
0: नेपालीहरुको मान पर्व विजया दशमी, शुभ दीपावली, नेपाल संवत र छठ पर्व को पावन अवसर में हामी हाम्रा संपूर्ण इष्ट मित्र आफन्तजन शुभ चिंतक सामाजिक क्षेत्र में क्रियाशील व्यक्तित्वहरू र देश विदेश में रहनुहुने संपूर्ण नेपाली दाजुभाई दीदी बहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य र उत्तर उत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: तोय बहादुर भट्टराई सामाजिक तथा राजनैतिक व्यक्तित्व पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 7 माछापुच्छे टोल।

0: विगत को 20 वर्ष देखि हजुर सेवा में समर्पित
1: वेस्ट सल्फर ले आयो नया जम्बो कम्बो अफर अब मात्र 12,000 में एक वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस 19,500 में दुई वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस
0: अब सब को लगी वेब सर्फर भर पर्दो विश्वासिलो हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस देश को पूर्व देखि पश्चिम सम्म फैलिएको हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट आईपीटीवी डिजिटल टीवी कर्पोरेट इंटरनेट इंटरनेट र डेटा सेंटर सर्विस आदि सेवा वेब सर्फर नेपाल अरू भन्दा फरक सबै भन्दा विश्वसनीय नेपाल भरि फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस सेवाको लागि वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस
2: कन्ट्याक्ट 0615530050 0615589848
0: फर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.np

रामचंद्र पौडेल महर्षि गुरुकुल वेद विद्याश्रम पोखरा तीन नदीपुर नारायण थान को अध्यक्ष नारायण थान धार्मिक क्षेत्र विकास समिति को सलाहकार र सनातन धर्म सेवा समिति काशी को सचिव यहां संपूर्ण विजयादशमी शुभ दीपावली नेपाल सम्मत छठ पर्व को मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु।